0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम जान चेक यति बेला बिहान को 10 बजे को

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: प्रोडक्शन सेन्टर घोराइश्वर सरराजु। सम्पर्क व्यक्ति रामहरि शर्मा।
1: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9857831840 र 9848720440।
0: 100% शुद्धता नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो।
2: मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ज।

वाइनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वाइनेट अब सब कनेक्टेड।

राम राम सन्जेक पाँच बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। कोराही उपमहानगरपालिका पन्ध्र मरलका हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सत्रौं वार्षिक साधारण सभा तथा छैठौं अधिवेशन सम्पन्न गरिराखल सहकारीले वित्तीय अनुशासन सदस्य केन्द्रीय सेवा केन्द्रित सेवा औ सामाजिक उत्तरदायित्व हुन प्राथमिकतामा धरती आगामी वर्षका कार्यक्रम तथा लक्ष्य सार्वजनिक गरिराखल। संस्थाका अध्यक्ष भगवती शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभाको उद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन गरिकन करगिल रह कार्यक्रममा उपाध्यक्ष ऋषिराम रिजाल से स्वागत मन्तव्य शुरू हो कार्यक्रम करगिल रहकलस्ते सचिव केशव दीप निपानी से संस्था का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करल रह कोषाध्यक्ष रामचंद्र कार्की से आर्थिक प्रतिवेदन और लेखा सुपरिवेक्षण समिति का संयोजक जनक शाह से लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करल रह वस्तकर उपाध्यक्ष रिजाल से संस्था का पुनर्लिखित विनियम प्रस्तुत करल रह साधारण सभा ओ अधिवेशन में प्रस्तुत करगिलक प्रतिवेदन में संस्था से वित्तीय स्थायित्व कायम करती सदस्य का हित हन केन्द्रमा धैकन गतिविधि सञ्चालन कर्तिर उल्लेख करगिल रह सहकारी क्षेत्र पाछक वर्षमा चुनौतीपूर्ण अवस्था से गुजरातिर लगब्याला हातेमालो सहकारी से पारदर्शिता उत्तरदायित्व और गुणस्तरीय सेवा प्रवाहन प्राथमिकतामा देती आफ्नो संस्थागत आधार न सुदृढ बनिलक प्रतिवेदनमा जनागिल बा। साधारण सभाको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुगिलको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ना शेर सदस्य हुनकला सम्मान तथा पुरस्कृत करगिल रह शर्मा ज्येष्ठ नागरिक होर कोराही सत्रक 83 वर्षीय इन्दुकान्त आचार्य ओ कोराही सोह्रक 79 वर्षीय चमेली देवी श्रेष्ठ हुन सम्मान करगिल रह सम्मान सल्लाहकार बेगम बहादुर भण्डारी से प्रस्तुत करल रह उसका उत्कृष्ट बचतकर्ता होर खिम बहादुर बुढ़ाथोकी ओ एमी कुमारी पुनहन अध्यक्ष भगवती शर्मा से खादा टीका प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिरखल। उत्कृष्ट ऋणी होर पोषण राज खनाल ओ तुलसी कुमारी बस्ने धन ऋण संयोजक रामचन्द्र कार्की से सम्मान करल रह सहकारी से शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा अन्ना विद्यार्थीले प्रोत्साहन गरिराखल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्लक हरिप्रसाद पौडेल ओ विद्याविष्ट हन शिक्षा उपसमिति संयोजक ऋषिराम रिजालसे सम्मान करल रह। कोराही उपमहानगरपालिका पाँच डागी गाउँ निवासी 56 वर्षीय दिलकुमारी घरती बासक सामग्री बनेती आरखले शुरूमा श्रीमानसँग छिटुवा डुवाका डालो लगायतका सामग्री बनाएकला आवश्यक बाँसको चोया बनिना काम गर्लक घरती पाछक समय अपनेज छिटुवा डुवाका लगायत सामग्री बनेती आरखले मदासे ध्यान देखन काम गर्लसे बाँसको सामग्री बनाइना गाह्रो निहिना उहाँ बटुवारखले असिक बनिलक छिटुवा साइज अनुसार 300 से 450 रूपियाँसम्म बिक्री हुना गर्लक उहाँ बटुवारखले घरायसी कामसँग बाँसको सामग्री बनेती अहिलक घरती यसले मजा आमदानी हुना बटुवारखले बाँसको सामग्री बनाएको केल परिवारको खर्च जुटिरी अहिलक उहाँको काही बाटिन खास गरिकन धान घरमा भित्रिना ब्याला भकारी चाडपर्व तथा विवाह लगायतका अवसरमा छिटुवा छिटनी लगायतका सामग्रीका बिक्री करलक उहाँ बटुवारखले महिनामा 15 से 20 हजार रूपियाँसम्मका बाँसको सामग्री बिक्री हुना गर्लक उहाँ जानकारी दिएरखले। विश्व शान्ति दिवस 2026 अवसरमा ब्रह्मा कुमारी मधुबन आध्यात्मिक पुनर्जागरण केन्द्र दाङमा प्राकृतिक विपदको कारण दिवंगत हुइलक आत्माको नक्कस शान्तिको कामना सहित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न हो रहल सक्कु जहेनलाक जहाँ सुकै हरेक दिन शान्तिमा लगानी गरिकन यस वर्षको शान्तिको सन्देश सहित आज कार्यक्रम आयोजना करगिलक हो। कार्यक्रममा ब्रह्मा कुमारी नेपालसे प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करलक सहयोगबारे जानकारी गरागिल रह ब्रह्मा कुमारी पूर्वी नेपालसे 1 करोड़ 1 लाख रूपियाँ ओ पश्चिम नेपालसे 42,75,342 रूपियाँ कैकन कुल 1,43,75,342 रूपियाँ संकलन तथा हस्तान्तरण करगिलक जानकारी गरागिल रह ऊ मध्ये ब्रह्मा कुमारी राप्ती क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न शाखा तथा उपशाखा 4,49,640 रूपियाँ संकलन करगिलक ब्रह्मा कुमार माधव तिमिल सिन्हा जानकारी दिइरहल।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघसे असोज 11 गते हुना निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार नरेश कार्कीसे उम्मेद्वारी फिर्ता लिएरख्ल। उहाँसे अध्यक्ष पदका अरू उम्मेद्वार नरेश कुमार श्रेष्ठ रहन समर्थन जनिते उम्मेद्वारी फिर्ता लिएलख्विट। प्रजातान्त्रिक उद्यमी संघमा आबद्ध व्यवसायी कनक बीच हुलक सहमति अनुसार आज कार्कीसे आफन उम्मेद्वारी फिर्ता लिएलख्विट। कार्कीसे उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्व कलाका व्यवसायी बीच विभाजन सेफे एकता आवश्यक र लगबटवा रख्ल। पार्टीगत प्यानल बनाकन उम्मेद्वारी पर्लक अवस्थामा व्यवसायी कनकला विभाजित हुने ध्येकला एक ढिक्का होकन अघारि भर्ना सहमति अनुसार अपनासे उम्मेद्वारी फिर्ता लेलक उहाँका काही बाटिन। वस्ताका कोषाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार ऋषि पोखरेल सेफे उम्मेद्वारी फिर्ता लिएरख्ल। उहाँसे कोषाध्यक्ष पदका अरू उम्मेद्वार दीपक पण्डित हन समर्थन गर्न घोषणा गरिरख्ल। हुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटी अखसक खबर मस्य समाचार कक्षको सक्कु संग्रहसँग मै शालिक राम चौधरी विदाहीटु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: 94 मेगाहर्ज मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जीव दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराहीदान फोन नम्बर 082-5-61-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
6: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 082-5-61-218।

0: चिकित्सा सेवा,
1: अनुहार का हड्डी भाँची को जोड़ने,
0: दाँत को एक्सरे सेवा,
1: सामान्य तथा जटिल दाँत निकालने,
0: फिक्स तथा झिक्न मिल्ने नक्कली दाँत राख्ने सुविधा,
1: अत्याधुनिक मेसिन द्वारा दाँत को सफाई,
0: मेसिन बाट जरेदेखि दाँत भरिने,
1: दाँत को पोस्ट तथा कोल प्रविधि द्वारा उपचार,
0: किराले खाएको दाँत को विभिन्न पद्धति द्वारा उपचार,
1: बाल बालिका को दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार,
0: साथै
2: वरिष्ठ डेन्टल कन्सल्टेन्ट अर्थो डेन्टिस्ट डाक्टर चेतनारायण पाण्डे द्वारा दैनिक रूपमा
0: बाङ्गो चिङ्गो दाँत तार बानेर मिलाउने सुविधा पनि छ।
3: सम्पर्क डी नोभा डेन्टल क्लिनिक, ट्राफिक रोड घोराहीदाङ, दीप ज्योति अस्पतालको 20 मिटर माथि। फोन 082562707।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: రంగా ఉదయ్ మీరు ఎవరెస్ట్
1: कोसेली बेकरी बी एंड फूड ट्रक को फेसबुक पेज फलो लाइक शेयर कर 50 कार्टुन पुरस्कार जित्नुस् मोबाइल भिकी हाल्नुस् त अनि कोसेली बेकरी बी एंड फूड को पेज फलो गर्नुस् पुरस्कार जित्नुस् भयो नि त मजा
0: संचालक नरेश कुमार श्रेष्ठ स्वर्गधारी चलचित्र मन्दिर घोराई दाङमा यही असो 2 गतेदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेका छन्। नेपाली कथानायक चलचित्र झिङ्गे दाउ 2
2: यसका दाजुभाइ के विधि बैरी बका होला एक अर्कालाई त सधुरै सम्झिन्छन्
3: तिम्रा दाई भाउजूले आमा गाउँ लगेछन् भने चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यहाँ